0: It's our tribute show to Parveen Bobby today on Bollywood Billboard, Lotus FM. Parveen Bobby shared superb screen chemistry with Shashi Kapoor in films like Namak Halal, Suhaag and Kala Patthar, even with Jitendra in Arpan and Didare Yaar. But she scored her career's biggest blockbusters with Mr. Amitabh Bachchan. Without doubt, Parveen and Amitabh are one of Bollywood's most iconic screen pairs. Deewar, Amar Akbar, Anthony, Majboor, Suhaag, Shah, Namak Halal, Khuddar and Kalia. In both Khuddar and Kalia, coincidentally, there were songs about L-O-V-E, love. Something that made her equation with Amitabh Bachchan bittersweet on and off screen, as she reveals in this rare interview done with Tabassum Talkies.
1: बहुत सारे कलाकार हैं जिन्हें मैं बहुत ही पसंद करती हूँ और बहुत ही उम्दा कलाकार भी हैं जैसे कि दिलीप साहब हैं संजीव कुमार हैं जया भादुरी और मीना जी थी वहीदा जी थी लेकिन एक ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और जो कि वो इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड कलाकार हैं उनका नाम जो कि बहुत ही फेमस है वो है अमिताभ बच्चन

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

डर रहा है इंसान, मर रहा है इंसान, और मैं जीते जी मरना नहीं चाहता। मैं जिंदा हूं और जिंदा होने का सबूत हूं।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल।